आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत

0: मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर 800-2471234 पर संपर्क कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमूज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरेज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों से निपटने को लेकर अमेरिका जल्द फैसला लेगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects

0: योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत पर भी बल दिया। उन्होंने प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल का उल्लेख करते हुए कहा कि ये जीवन और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक नवाचार और सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर युवा एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए होंगे। एक रिपोर्ट।
2: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
4: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
3: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
5: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
3: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और उसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री विस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकते।

0: है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सुहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
2: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथोपिया के नागरिक हैं। उन्हें उबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01123314-01123717। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सुनती हो?

0: कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकशक्ति की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की हैं। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हूती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights potential of India's youth in solving global challenges while remaining anchored in the ancient cultural roots. Delhi government to distribute 1300 e-autos to women and transgenders under Durga scheme. One person killed and 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days. US President Donald Trump announces an energy ceasefire between Russia and Ukraine with immediate effect. 139 people killed after overcrowded boat capsized off Djibouti coast. And in cricket, India beat West Indies by 14 runs in the third T20 international to take a 2-1 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi highlighted the global potential of India's youth during the Golden Jubilee celebrations of the Jai Gopal Garodia Hindu Vidyalaya in Chennai. Mr. Modi asserted that the global community is actively searching for innovative answers to emerging challenges and expressed absolute confidence that India's youth possesses the talent and the potential to provide them.
5: Viksit Bharat ke liye jo naye ideas chahiye, jo naye solutions chahiye, unse भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
4: द प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज द करंट ईरा बिलोंग्स टू द यंगर जनरेशन। मिस्टर मोदी नोटेड दैट द फ्रेश आइडियाज एंड हार्ड वर्क विल मोल्ड द फ्यूचर बोथ इंडिया एंड द वाइडर वर्ल्ड अलोंगसाइड ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग। Prime Minister delivered a message centered on national unity and the timeless wisdom of Tamil heritage. He specifically praised the ancient Tamil classic.

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, जीवन में रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो मंजिल एक दिन खुद हमारा रास्ता पूछते हुए हमारे पास ही आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमारे श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखा है, सादर नमस्कार विमलेश जी और अजीत जी। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इतने सफल प्रसारण के लिए मैं उमंग परिवार की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अगला संदेश हमें मिला है रामकुशल पटेल जी का छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, 15 सितंबर को हमने कार्यक्रम उमंग में पर्यावरण से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनी। पेड़ पौधों का हमारे जीवन और पर्यावरण में कितना बड़ा महत्व है, ये जानकर हमें बेहद अच्छा लगा। ऐसी उपयोगी जानकारी देने के लिए NCERT की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है कि उमंग कार्यक्रम निरंतर प्रसारित करते रहें। आपको बता दें कि उमंग कार्यक्रम हम पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा और मनमोहक लगता है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां भी सुनने को मिलती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इतनी उपयोगी प्रस्तुति के लिए। श्रोताओं, अगला संदेश हमें मिला है उरई कछार लोरमी छत्तीसगढ़ से वैशाली पटेल, हेमवर्षा पटेल, युवराज पटेल, देवराज पटेल, जगबाई पटेल और रमेश पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने, कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है। आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम में जिस तरह से सभी प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम का प्रयास प्रशंसनीय है। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को आपने यादगार बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू जी का। लिखते हैं, बहुत चर्चित उमंग कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले अजीत एवं बिमलेश जी को सादर बधाई एवं नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों की प्रस्तुति बेहद लाजवाब रहती है, सुनकर हम आनंदित हो जाते हैं। बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियां तो हमें सुनने को मिलती हैं। विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होने वाले उमंग कार्यक्रम के द्वारा हमें सच में बहुत ही लाभ होता है। आपके सभी कार्यक्रम

0: बहुत ही लोकप्रिय और मन भावन लगते हैं। महोदय, मैं 1983 में कक्षा 7वीं से आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। अब मेरी उम्र 61 साल की है। आकाशवाणी रेडियो का मैं दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अब सुनते हैं अगला संदेश जो हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे जी का। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू जी का। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हमें संदेश मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सभी श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। तो इसका उत्तर सुन लीजिए। इसका उत्तर है सूर्योदय की भूमि जापान को कहते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है निप्पॉन, जिसका मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान। जापान एशिया के पूर्वी छोर पर है, जिसके कारण वहां से सूर्य सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था कि अब तक किन किन भारतीयों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। साहित्य में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, भौतिकी में सर सीवी रमन, चिकित्सा में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा, अर्थशास्त्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी, और शांति का नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी। हमारा अगला प्रश्न था कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा उनके लोकप्रिय राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि परमवीर चक्र पदक का डिजाइन किसने किया था। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। परमवीर चक्र पदक का डिजाइन श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम इवरॉन लिंडा था। वहां वे रॉयल मिलिट्री एकेडमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनसे विवाह कर भारत आ गईं। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए ये सम्मान मिला। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता का ये एक सुंदर संगीत रूपक है, जिसमें भारत भूमि की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में विद्यमान एकता की भावना का उल्लेख किया गया है। नमस्ते बच्चों।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे हैं।
0: तो बच्चों, ये बताओ, आपको कविता पसंद है ना?
2: मुझे अच्छी लगती है।
3: मुझे बहुत पसंद है।
4: मुझे भी पसंद है।
5: मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत अच्छे, मुझे भी कविता बहुत पसंद है। तो बच्चों, आज हम एक कविता का पाठ करेंगे।
1: जी सर।
2: मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है।
0: ठीक है,
1: ठीक है, ठीक है।
3: बहुत अच्छा लगा।
0: तो बच्चों, कविता का शीर्षक है हम अनेक किंतु एक। क्या है शीर्षक?
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो अब बच्चों, मैं इसका पाठ करूंगा और आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे। तो तैयार हैं आप सब?
1: जी।

0: तो शुरू करते हैं कविता। हैं कई प्रदेश के,
1: हैं कई प्रदेश के,
0: किंतु एक देश के,
1: किंतु एक देश के,
0: विविध रूप रंग हैं,
1: विविध रूप रंग हैं,
0: भारत के अंग हैं,
1: भारत के अंग हैं,
0: भारतीय वेश एक,
1: भारतीय वेश एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: बोलियां हजार हैं,
1: बोलियां हजार हैं,
0: टोलियां हजार हैं,
1: टोलियां हजार हैं,
0: कंठ भी अनेक हैं,
1: कंठ भी अनेक हैं,
0: राग भी अनेक हैं,
1: राग भी अनेक हैं,
0: किंतु गीत बोल एक,
1: किंतु गीत बोल एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक,
0: एक मातृभूमि है,
1: एक मातृभूमि है,
0: एक पितृभूमि है,
1: एक पितृभूमि है,
0: एक भारतीय हम,
1: एक भारतीय हम,
0: चल रहे मिला कदम,
1: चल रहे मिला कदम,
0: लक्ष्य के समक्ष एक,
1: लक्ष्य के समक्ष एक,
0: हम अनेक किंतु एक,
1: हम अनेक किंतु एक।
0: तो बच्चों कैसी लगी कविता?
1: मुझे बहुत अच्छी लगी।
0: अच्छी तो लगी, तो अब बताइए, अभी हमने सुना हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, क्या सुना हमने?
1: हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के।
0: तो अब ये बताइए कि हम किस देश में रहते हैं?
1: भारत।
0: हाँ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। तो ये तो देश हुआ, लेकिन प्रदेश क्या है?
2: हमारे देश में बहुत से प्रदेश हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो किसी प्रदेश का नाम बताइए।
3: उत्तर प्रदेश में मेरी नानी रहती है।
4: असम में मेरे दादा रहते हैं।
2: और एक और मैं बताऊँ, पंजाब।
0: आपको तो भाई बहुत कुछ पता है। बच्चों हमारे देश में कुल 28 प्रदेश या राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अब जरा बताइए, क्या इसी कविता को गीत में सुनना चाहते हैं?
5: बहुत मजा आएगा।
6: हाँ बहुत मजा आएगा।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत, हम अनेक किंतु एक। क्या?
1: हम अनेक किंतु एक।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हम अनेक किंतु एक। हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको जरूर जरूर बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। इस सुंदर गीत के बाद आइए अब अंत में सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है राइफलमैन संजय कुमार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में भारत पाक युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के बहादुर और पराक्रमी सैनिक संजय कुमार के शौर्य का वर्णन किया गया है। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: बेटा संजय आप सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे

0: कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा, वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी, वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा, तो मेरे संजय बेटे को सब याद है?
1: हाँ चाचा जी, मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई, क्यों नहीं बताया था? जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी, क्या हुआ?
0: हाँ तो संजय बेटा, उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। छक्के?
2: साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
2: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
3: ये बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। ये इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
2: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण

0: असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: कैसे हो वो लोग ऊंचाई पर लोग
3: साथियों?
2: बिल्कुल ठीक है।
3: आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, बहुत धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
2: ठीक है।

0: तो शुरू करें?
1: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल ले। पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
0: आजा मुकेश, आजा।
2: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
3: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मनोबल। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
4: कमांड,

0: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा।
1: आगे बढ़ो, बच लो, जवाब दो,
0: राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
2: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
3: बिल्कुल ठीक।
2: आंख में आंख डाल के फायर करो, फायर।

0: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
1: कार्बाइन खाली हो गई है।
2: क्या करूंगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो ठहरो।
1: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
0: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
3: आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी, जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
1: दुर्गा माता जय।
3: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
0: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
4: भागे, भागे रहे हैं। और कहां भागते हो? और रुको, ठहरो, हिम्मत है तो सामने आओ। हमने साथियों, तुम्हें से कोई बचकर नहीं भागेगा। मारो।
3: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
5: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है।
6: वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली है।
7: आपको वहाँ ले चलते हैं।
6: वहाँ चलते
7: हैं। मरहम पट्टी करवा लीजिए। खून का बहना रुक जाएगा।
6: आओ भाई जी।
8: नहीं मानसिंह,
6: आओ तो सही।
8: चिंता मत करो,
5: मैं यही ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
7: लेकिन जी, लेकिन
5: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ।
7: अरे
5: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
7: आप सुनो,
5: छुपा हुआ ना
7: आप
5: कोई बचने ना पाए। जाओ चेक करो।
7: लेकिन
5: चेक करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे।
7: लेकिन
5: कुछ नहीं होगा मुझे।
7: लेकिन
5: जाओ
7: आप।
3: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्कोह घाटी के पॉइंट फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
5: संजय भाई, इधर आओ। क्या आ चुका था?
9: संजय भाई तो बोल ही नहीं रहे।
0: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

2001 में बनी फिल्म दिल चाहता है फरहान अख्तर की पहली फिल्म है जिसमें आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय कुमार थे, लेकिन इस फिल्म का असली हीरो था इसका संगीत। अब सवाल है कि शंकर एहसान लॉय की डिग्री कैसे बनी। एहसान और लॉय तो कॉलेज के दिनों से ही दोस्त थे। शंकर महादेवन उस समय एक अलग ही नाम थे और एक बेहतरीन गायक। 1996 में फिल्म 10 के लिए तीनों पहली बार मिले और तब से इनकी दोस्ती नहीं रुकी। अब आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत।

उन्होंने ये क्या हो रहा है, नए पड़ोसन, एक और 11 जैसे कई फिल्मों के लिए संगीत दिए और अरमान कुछ न कहो इन फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया और अरमान फिल्म में उनके काम को आलोचकों ने खूब सराहा। अब आइए सुनते हैं उनके द्वारा संगीत दिए गए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उनका बड़ा प्रोजेक्ट धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म कल हो ना हो थी, जिसका निर्देशन निखिल अडवाणी ने किया था। फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों ने खूब पसंद किए। यह उस वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाले भारतीय संगीत एल्बम में से एक बन गया और 2003 का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। साउंडट्रैक के बात करें तो साउंडट्रैक ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। अब आइए सुनते हैं उनके संगीत पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

वर्ष 2005 में उन्होंने शाद आले का लिखा बंटी और बबली के लिए संगीत दिया। इस फिल्म के संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत दर्शकों में काफी लोकप्रिय हुआ और इसने कई पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन अभिनीत गीत कजरारे श्रोताओं के बीच आज भी बेहद ही लोकप्रिय है। 2006 में उन्होंने करण जौहर के संगीत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म कभी अलविदा ना कहना के फिल्मों के गीतों को संगीत दिया और इस फिल्म के साउंडट्रैक दर्शकों को काफी पसंद आया और उस वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला भारतीय संगीत एल्बम बन गया और इस टिकरी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार, आर डी बर्मन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन IIFF पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का परागमाला लाइव कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: परागमाला परागमाला
2: ইমান পৰে পৰাগমালা লাইভ শুনিলে আগবঢ়ালে অৰ্চনা দেৱীয়ে।
3: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱবাণী।

0: বারে রহনীয়া গীত মাতর অনুষ্ঠান হিপ হিপ হুরের এটি খন্ড শুনিলে। যুগুতায় আগবঢ়ালে ঝরণা ভরালী আর শাশ্বতী তালুকদারে। আমার যুববাণীর পরা অনুষ্ঠানটি ইমানতে অন্ত পড়িল। প্রাঞ্জিত প্রীতম কলিতার সহযোগত অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা করিলে ইন্দ্রজিৎ দাসে।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীর মহাবাহু। খন্তেক পাছতে বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মই কনকলতা। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
2: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मानवाधिकारों का सीधा संबंध मानवीय गरिमा से है और इनमें स्वास्थ्य सेवा, भोजन, आवास, आजीविका और स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच शामिल है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप जो उनकी समस्या है उसका हम अपनी तरफ से उसकी सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
2: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि लोग प्रभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा करने से बचें। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। मंत्रालय ने कहा कि स्थिरता बिजली संयंत्रों की दैनिक खपत के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को दर्शाती है। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। ये एक सुरंग रोधी जहाज था। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित मांगरोल युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और उन्नत हथियारों तथा सेंसरों के एकीकरण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। घरेलू शेयर बाजार आज सुबह 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक गिरकर

0: পুৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
2: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
3: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर

0: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ में कल तक आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उतले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए डिजाइन किया गया आईएनएस मंगरूल आधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है। इनमें अभय हल माउंटेड सोनार, हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और मारीच उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल है। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले 3 डीजल इंजनों से संचालित यह पोत उथले पानी में तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। यह पानी के भीतर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और वॉरफेयर से जुड़े अभियानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगरूल समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य युद्धपोतों के साथ मिलकर पनडुब्बी से जुड़े खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
2: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमयू की साइनिंग भी और नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर में केवल वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
3: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली में विपक्षी दलों के आज दोपहर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, डायवर्जन के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली

0: ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा का दावा है कि 11 छात्राओं की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने अंगोमचा को उनके पद से हटा दिया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की कथित चुप्पी की आलोचना की।
1: स्मैच द पैट्रियार्की का हवाला देने वाले श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, क्या आप अपने इस मौन से बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद है उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कंडोन करते हैं? अगर स्मैच द पैट्रियार्की आपके लिए केवल एक चुनावी जुमला नहीं है तो बिमल अकोइजम जो आपके सिटिंग सांसद है उनके खिलाफ एक्शन लेके दिखाइए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।
2: I welcome our distinguished participants from friendly foreign countries. This diverse composition provides a unique opportunity for cross-national learning. That is the great importance of this course. Exchange of cross-sectorial perspectives and deeper understanding of national security and strategic issues.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इससे योग को वैश्विक पहचान मिली और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
4: योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है।
3: केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय और विभिन्न संस्थान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सामूहिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का योग और अध्यात्म से गहरा संबंध है। ऋषिकेश विश्व भर में योग और ध्यान के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हिमालय और गंगा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देश विदेश के लोगों को यहां आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान

0: दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार 4:00 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া নিবেদন কৰিছো পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

0: गीत बहुत सुंदर था दीपा, और ऐसे गीत जब बजते हैं ना तो गठिया वटिया सब भूल के ना नाचने कूदने को झूमने को दिल करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह जब रात को गरबा होता है ना, तब भी कितना भी दर्द हो रहा हो हाथ पैरों में, लेकिन जब वो थिरकते हुए हम पैर देखते हैं या ऐसा कोई गीत सुनते हैं ना, तो मन करता है कि थोड़ा सा चलिए चाहे दो राउंड
1: बिल्कुल,
0: लेंगे गरबा के हम, लेकिन हो जाए।
1: दिल जब खो जाता है तो किसी सखी को ही बताया जाता है ना।
0: और चलिए हम गठिया दिवस के बाद अब बात करते हैं एक और खास दिवस की, जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र विचार दिवस।
1: बिल्कुल।
0: ये भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये दिन हमें याद दिलाता है दीपा कि सोचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन किसी की दी हुई वस्तु नहीं है। ये स्वतंत्र विचार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी मन में आया वो बोल दिया। बड़ों का अपमान करना, हर परंपरा को भला बुरा कहना, इसे विचारों की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता।
1: जी, स्वतंत्र विचार का मतलब ये है चंचल कि किसी भी बात को आंख बंद करके ना मानना, सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल रखना चाहिए। ऐसा क्यों, ये हम पूछ सकते हैं अपने बुद्धि, अपने अनुभव और सबूतों के आधार पर अपनी राय बनाना और दूसरों को भी अपनी राय बनाने की जो है जब बना उसका सम्मान करना। अगर किसी की राय कुछ और है, हमारे सोच से अलग है, तो उसका सम्मान बिल्कुल करना
0: चाहिए। आज हमारे पास जानकारी तो बहुत है लेकिन सोच है वो बहुत कम है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी सूचना जो हमें मिलती है हम उनको ही सच मान लेते हैं, और भीड़ का हिस्सा मानकर हम भी वही करने लगते हैं जो सारे लोग कर रहे होते हैं। और कई बार हमें ये भी डर लगता है कि इससे अलग सोचा तो लोग क्या कहेंगे।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसलिए सुनो सबकी, करो अपने विवेक की, मानो वही जो बुद्धि को ठीक लगे। बुजुर्गों ने कहा है, सुनिए सबकी, करिए मन की, पर मन का मतलब जिद नहीं, विवेक है। स्वतंत्र विचार विद्रोही नहीं, ये जिम्मेदारी है, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करने की हमारी जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल सही कहा, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि बातों के साथ साथ गीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए।
1: चलिए।

0: चंचल
1: बोलिए।
0: देखो ऐसा लगता है ना कि भाई छोटी छोटी हम वो किस्सा कहानी जो पड़ी है, बूंद बूंद से जो घड़ा घड़ा जो भरता है
1: जी,
0: बस ठीक उसी तरह हमारी छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती
1: सही कहा। हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, घर व्यवस्थित रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे, जीवन में खुशहाली आए, लेकिन इसके लिए हमेशा बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़े परिणाम दे सकती है ना दीपा?
0: बिल्कुल सही कहा। तो देखो चलिए जान ही लेते हैं आपकी जिंदगी, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें कौन से छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी सुबह से, अच्छी आदतों से हमें करना चाहिए। उठते ही मोबाइल देखने के ये जो आदत है उसके बदले में थोड़ा सा टहल लें, घर के अंदर ही ताजी हवा ले लें या हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है ना वो कर लें। और छोटी सी आदत ये देखो हमें दिन भर ऊर्जावान रहने में मदद कर सकती है।
1: इसके अलावा एक छोटा सा दूसरा बदलाव हम ये भी कर सकते हैं कि अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव ले आए, पर्याप्त रूप से पानी पिए, फल सब्जियां खाएं, जंक फूड का सेवन थोड़ा सा कम कर दें। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए जरूरी ये नहीं कि हम सब कुछ एकदम से बदल दें, लेकिन छोटी छोटी सी आदतों से भी हम अपना सकते हैं। और मौसम में जो फल सब्जियां आते हैं उनको अपने आहार में जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और सही समय का हमें समय का जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कभी कभी होता है ना बेवजह समय बिताने लगते हैं, हम पता ही नहीं चलता कितना वक्त निकल जाता है। इसके बदले में हम कुछ समय किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए कुछ समय को, और नई चीजें सीखने का या अपने शौक पूरे करने में भी हम व्यतीत कर सकते हैं अपना समय। और रोज के 15 मिनट भी धीरे धीरे अगर कुछ सीखा तो समझ लीजिए सच में बहुत कुछ सीखा।
1: एक छोटा सा संदेश इसके बारे में बड़ा अच्छा आया है कि छोटी आदतों में बदलाव करने से समय के साथ जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम आते हैं। जब आप

0: हमारा खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत छोटी सी करते हैं तो बहुत महीनों या सालों में वो बदलाव बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे कभी कभी छोटी सी बचत बहुत बड़ी बचत बन जाती है, आपका अर्थ मजबूत होता है। सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन, हल्की सैर, छोटी छोटी ये आदतें हैं जो मानसिक शांति, सकारात्मक मानसिकता और बेहतर समय प्रबंधन लाती हैं, और ये छोटी सी जो बातें हैं वो जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ले आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, घर को भी साफ सुथरा रखने के लिए रोज केवल 10-15 मिनट अगर हम निकाल लें तो सच में देखो जो चीजें हैं वो व्यवस्थित रहेंगी। हर दिन ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी, आज हम बोलते हैं ना कि संडे है अब आज हम सफाई करेंगे, अगर हर रोज भी थोड़ा थोड़ा समय निकाला तो घर आपका व्यवस्थित रहेगा।
0: एक छोटा सा संदेश है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात लिखी कि रोज व्यायाम करना, सैर करना कुछ देर भी अगर आप करते हैं, रोज नहीं हो पाता तो समय के अंतराल पर करिए, लेकिन इसे पता लगता है कि धीरे धीरे शरीर जो है वो स्वस्थ होता जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, और आर्थिक स्थिति को भी हम बेहतर बना सकते हैं छोटी छोटी आदतों से, जैसे गैर जरूरी खर्चों से बचें और खरीदारी से पहले सोच लें कि क्या सच में वो चीज हमें जरूरत है उसकी, क्योंकि फट से ऐसे ही ऑनलाइन ये जो क्लिक कर देते हैं हम बटन, उसके पहले जरा सा उंगली हटा लीजिए और सोच लीजिए, और धीरे धीरे यही छोटी बचत आपकी बड़ी बचत में तब्दील हो सकती है।
0: ऐसे ही एक संदेश कहता है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे कदम, जैसे मीठा बोलना, समय की कद्र करना, दूसरों की मदद करना, ये भी हमारे जीवन को खूबसूरत बना देती हैं। बस छोटी सी शुरुआत है तो बड़ा बदलाव भी एक दिन जरूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल, हम फिर आ जाते हैं अब एक और जरूरी आदत पर, सकारात्मक सोच की। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने की हमें कोशिश करना चाहिए चंचल, और जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों का उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त नहीं करते, कम करते हैं जरा। छोटी सी ही बात क्यों ना सही कि मेरा भरा पूरा परिवार है, सब लोग मेरे साथ हैं, हम इसके लिए भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ही दिन में सारी आदतें देखिए बदलने वाली नहीं है, इसकी कोशिश भी हमें करनी नहीं चाहिए, बस शुरुआत एक या दो छोटी अच्छी छोटी छोटी आदतों से करिए, नियमित रूप से उसे अपनाकर देखिए तो सही, आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे।
0: एक छोटी सी आदत हमारी भी है कि हम बीच में गाने सुना देते हैं, वो हमें रोकनी नहीं।
1: ये तो बहुत अच्छी आदत है।

0: फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: भाई हम बहुत बोल रहे हैं, हम कोई भी काम करें चाहे वो बोलने का हो या कोई शारीरिक श्रम हो, ऊर्जा कैसे मिलती है, हमें खाने से ऊर्जा मिलती है।
5: बिल्कुल सही
4: तो का। मेरे कहने का इशारा आप समझ गए कि अब कुछ खान पान की बात भी होनी चाहिए ना?
6: और हमारे यहाँ तो इतने विभिन्न प्रकार के देखो व्यंजन होते हैं, हम हर प्रदेश के व्यंजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और कितने तरह तरह के व्यंजन और रेसिपीज हमने सीखी भी है। आज छत्तीसगढ़ की हम सीख रहे हैं अंगाकर रोटी। ये एक पारंपरिक वहाँ के व्यंजन, प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन है। इसे सीधे आग के अंगारों पर पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर कहा जाता है। और इसे पान रोटी या पन पूर्वा रोटी भी कहते हैं क्योंकि ये पत्तों में लपेटी जाती है। लेना क्या है इसमें, पका हुआ चावल लेना है या बचा हुआ चावल भी आप ले सकते हैं, एक कटोरी चावल का आटा, एक कटोरी नमक अपने हिसाब से ले लीजिए, और केले के पत्ते या पलाश के आपको अगर मिल जाए तो वो वाले पत्ते, गोबर के उपले या लकड़ी के अंगारे अगर हो सके तो। बनाना कैसे, सबसे पहले पके हुए चावल को अच्छी तरह मसल ले, इसमें चावल का आटा और नमक मिलाकर नरम आटा गूंद ले। अब जो पत्ते आपने लिए हैं पलाश के या केले के पत्ते, उनको आपस में रखना है, आटे की मोटी लोई बनाकर पत्ते के इसके ऊपर रखना है और ऊपर से एक और पत्ता ढकना है। अब जो तैयार पत्ते वाली रोटी को जलते हुए कंडे या कोयले के अंगारे पर रखना है, ऊपर से भी आपको गर्म अंगारे डाल देना है। ये नहीं है तो फिर अब आप घर पे जो तवा है उसके ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो 15-20 मिनट तक पकने दीजिए और पत्तों की देखिए सौंधी सौंधी खुशबू रोटी में आ जाती है। पत्ते हटाकर गर्मा गर्म अंगाकर रोटी को टमाटर की पतली चटनी या घी के साथ परोसा जाता है वहां पर पारंपरिक रूप से।
4: बिल्कुल, ऐसे नए व्यंजन देखते हैं तो उनको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और अब हम सुन लेते हैं गीत। चलिए।

0: चंचल, हमसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, फरा की जो व्यंजन विधि जल्दी से बता दो।
1: तो भाई देखिए, हमारे श्रोताओं ने इसकी व्यंजन विधि लिखकर भेजी है और वो ये भी बता रहे हैं कि फरा उनके यहाँ करवा चौथ पर बनाया जाता है, तो करवा चौथ भी आने वाली है, थोड़ा सा ही इंतजार रहेगा। लेकिन आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि फरा तो जब भी मन करता है ना तभी ये बना लिया जाता है। इसके लिए चावल के आटे को सान कर उसकी लोई में चने की पिसी हुई दाल में नमक, मिर्ची, अदरक, ये जो चीजें इनको बारीक काट लिया जाता है और इनको मिलाकर भरकर उबलते पानी में डालते हैं। कुछ ही देर में फरे हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं और थोड़े से कड़े हो जाते हैं, इनके जो ऊपर का आटे का कवर है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। और फिर पानी से निकाल कर छोटे टुकड़ों में इन्हें काट कर हींग और जीरे से छौंका लगा लिया जाता है। फिर हरे धनिये की चटनी के साथ इनको खाया जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। तो फरा जो है वो कई प्रांतों में बनाया जाता है, हर प्रांत में बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चावल के आटे के साथ बहुत सारे लोग इसमें आटे के साथ भी बनाते हैं और जो ताजा चने की दाल को पीसकर बनाई जाती है, जो मसालों का इसमें प्रोपोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। कुछ इसमें पीसा हुआ लहसुन अदरक भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च आपको जरूरत के अनुसार अगर जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डालिए या ना डालिए, तो ये बदलाव अपने हिसाब से किए जा सकते हैं। और फरा को कहीं कहीं मुठिया भी कहा
0: जाता है। अच्छा, एक संदेश और छोटा सा है कि हर रोज एक गुल्लक में कुछ रुपए जमा करते हैं तो एक अंतराल पर वही छोटी छोटी बचत से कितना पैसा अनजाने में जमा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता।
1: बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे गाने जमा हो जाते हैं, लेकिन ये जो सुन रहे हैं ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: घड़ी की सुइयां अभी हमें वक्त नहीं दे रही हैं कि हम और बातें करें, तो इजाजत ले लेते हैं सविता
1: बिल्कुल,
0: चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में,
2: मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर्स के लिए नया एक्सपीरियंस रहता है ना तो।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं संदीप जी?
2: मैं रहने वाला प्रयागराज इलाहाबाद, और पढ़ाई मैंने की है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
2: और उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया था, वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उसके बाद फिर मुंबई की तरफ रुख किया।
1: जी जी,
2: यहाँ पे मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल है, बहुत प्राचीन हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छा काम होता है इंटेंसिव केयर का। तो वो फिर मैंने वहाँ इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग की।
1: अपने

0: इंटेंसिव केयर को क्यों चुना अपने स्पेशलाइजेशन के लिए?
1: हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको लगता है डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि लाइफ सेवर हो जो,
0: हाँ,
1: और वो केसेस जितने भी हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसा लगता था, मतलब डॉक्टर सबका रोल है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट है उनका सब एक टीम वर्क होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब इंटेंसिव केयर का डॉक्टर जो रहता है वो जब यंग होते हैं, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो लगता है नहीं यार जान बचानी है कम से। तो वो एक था इंटरेस्टिंग मेरी तरफ से, ऐसा कि भाई चैलेंजेस रहते हैं, हर दिन आप एक नया चैलेंज देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है अभी भी।
0: बिल्कुल।
1: तो वो है
0: एक चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई मरीज आईसीयू में जाता है तो परिवार में एक तरह से पैनिक हो जाता है कि आईसीयू में जाने का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जान बचने वाली नहीं है। एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप इन बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए कि आईसीयू में जाने का मतलब बहुत पैनिक नहीं है, वहां से लोग लौट कर भी आते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं सर, अभी तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं
0: जी,
1: और जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है। 100 में से 99 तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ 90 से ऊपर लोग वापस आते हैं। ये ऑब्वियसली कि आप किसी भी पेशेंट को, उसके सगे संबंधी को बोलेंगे कि भाई इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत है, तो थोड़ा तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतने डरने की बात नहीं है। और इस भ्रम की वजह से भी कि इंटेंसिव केयर यूनिट पर नहीं जाना चाहिए, हमको घर पे ही रख दो या हम वार्ड में ट्रीटमेंट लेंगे, ये कभी कभी समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सही समय पे सही जगह पहुंच जाते हैं, ये हर फील्ड में है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सही समय पे सही जगह पहुंच गए तो आपके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अब वो भी नहीं है कि पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि लास्ट स्टेज में आईसीयू, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ मॉनिटरिंग की, भाई इनके वाइटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर पल्स ऊपर नीचे हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें एक क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भी शिफ्ट करते हैं।
0: एक बहुत नॉर्मल परिस्थिति में, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति ना हो, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए भी किया।
1: आप उस तरफ ना जा पाए, नॉर्मल सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से एक बीच का एक रास्ता बना भी है कि ब्रेक कर दिया हमने।
0: हाँ,
1: एक पेशेंट थोड़ा सा बैड हुआ, उसको हमने इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया और उसको स्टेबलाइज कर दिया, और 80-90% केसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं। सर,
0: आपसे बात करते हुए जाने क्यों मुझे कोरोना का समय याद आ गया, क्योंकि आईसीयू की इतनी बातें हुई उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उन्हें तो याद करते हुए भी जरा डर लगता है।
1: बहुत बहुत
0: वो कितना चैलेंजिंग वक्त था आप लोगों के लिए, जो खासतौर पर आईसीयू स्पेशलिस्ट,
1: मेरे ख्याल से जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है ना सर, उसके लिए तो मतलब शुरुआत के दौर में था कि कुछ पता ही नहीं था ना इस बीमारी के बारे में। ये था कि भाई कोरोना हुआ और वो नहीं बचेगा, और शुरू में मेडिकल साइंस को भी नहीं पता था, ट्रायल एरर हिट एंड ट्रायल चल रहा था, भाई ये दे दो ये दे दो। तो हमें याद है कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमने एक अलग से इसको बनाया, भाई कोरोना केयर यूनिट रहेगा, यहाँ पे अलग से पेशेंट रहेंगे, तो वो बहुत स्केरी था, क्योंकि हमको खुद भी नहीं पता था कि हमारा क्या होगा। हमारा मरीज है, बट दुनिया को कुछ पता नहीं था कि किस तरफ हम जा रहे हैं,
0: हम एक अननोन राक्षस से लड़ रहे हैं।
1: हाँ हाँ, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको किया, ऐसा नहीं, हम लोगों ने बहुत जान बचाई, बहुत सी नहीं बचे वो तो उस पर क्या कमेंट किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से किया उसको, हम लोग उस समय को निकाल पाए।
0: आपके लिए इमोशनली ये कितना मुश्किल होता है कि आप एक ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मेडिकल के, जहां जाने बच भी जाती हैं और चली भी जाती हैं।
1: हाँ,
0: तो किसी पेशेंट को खो देना इमोशनली कितना बड़ा झटका होता है आपके लिए, और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना भारी पड़ता है।
1: जो हम लोग है तो इंसान ही ना
0: जी,
1: वो पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट वो फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी। और उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, किसी को सगा संबंधी आप तो स्थिति में आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान तो कुछ भी नहीं होता ना। तो बहुत एक दो साल हमको वही लग जाता है सीखने में कि बात कैसे करनी है, बैड न्यूज कैसे आपको सामने वाले को बताना है, वो टच बनाए रखे हुए, मतलब आप मशीन से तो बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया अब नहीं हो सकता। उसके लिए भी एक हमारे जो सीनियर्स डॉक्टर से, वो आपको कभी रूड नहीं होना है, भाई आप सामान नहीं बेच रहे ना यार, इंसान की जिंदगी का सवाल है, तो बात भी हमारी हो जाए, उनको हम अंधेरे में भी नहीं रखे, वो भी बताना एक जरूरी होता है कि भाई कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनका कुछ इलाज नहीं है, वो न्यूज़ देना।

0: बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोज का चैलेंज है सर वो।
1: जी जी
0: कि कैसे आप उस चीज को रखें कि अभी है तो है, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते
1: जी,
0: वो बताना तो होता ही है।
1: बिल्कुल मैं समझ सकता हूं। अब बदलते वक्त के साथ भारत में जो आईसीयू फैसिलिटीज हैं उनमें किस तरह का बदलाव आया है? जब आप पढ़कर निकले थे तब से अब तक भी बहुत वक्त बीत गया,
0: आसमान तो... जमीन का फर्क हो गया सर। और इसलिए मैं डॉक्टर में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी इग्नोर ना करें, सही बीमारी सही समय पे पकड़ आ गई तो मेडिकल साइंस हमारा इतना तरक्की कर गया है कि आप हर बीमारी में कम से कम एक लाइफ स्टाइल तो आपको अच्छी हम दे ही सकते हैं, भले वो कैंसर का ही मरीज क्यों ना हो। जो जानलेवा बीमारियां हैं और आजकल खासकर आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, अचानक डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी ये रहता है कि भाई जांच क्यों कर रहे हैं आप। दोनों चीजें हैं, मैं मानता हूं कि भाई ओवर इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, बट आप अगर हमारी तरफ बैठ के देखेंगे ना तो हमारे दिमाग में रहता है यार ये मेरे पास होके जा रहा है, कुछ बच ना जाए यार, यंग है, फिट है, एज अ डॉक्टर
1: कोई कमी ना रह जाए।
0: हाँ, कल को बाद में आप सोचते हैं यार इसका ईसीजी कर लेते हो भाई, छोटी सी जांच। अक्सर आप देखते होंगे चेस्ट पेन 90% एसिडिटी है, हमारे हिंदुस्तान में तो हर चीज एसिडिटी रहती है
1: जी।
0: हाँ, वो सर बड़ा पाव खा लिया था
1: जी,
0: मैं भी मानता हूं, लेकिन यार वो थोड़ा बेसिक तो चाहिए हमको कि ये चेस्ट पेन है वो एसिडिटी का है या कार्डियक है, ये जो हाथ पांव में कमजोरी है ये स्ट्रोक है या आपके नहीं सोने की वजह से है या ना खाने की वजह से, ये पहचानने के लिए जांच तो जरूरी है, बेसिक ये अवेयरनेस थोड़ा हमको आम पब्लिक तक भी फैलानी है, तो आपकी पहुंच गांव गांव कोने कोने में है, तो
1: ये पूरी दुनिया में।
0: हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा माध्यम है ये कि बेसिक करवा लो यार, बेसिक जांच। और आजकल तो स्वास्थ्य केंद्र में भी हमारे भारत सरकार की तरफ से तो हर चीजें हैं कि आप बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है, कभी भी कमजोरी लग रही है 4-5 दिन ठीक है, उसके बाद लग रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, छोटी सी जांच कर लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो जांच नॉर्मल हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन बिना उसके ये थोड़ा है अभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अवेयरनेस आ रही है बट अभी भी बहुत जरूरत है इसमें, खासकर जो इस तरह की जो हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गया तो हम लगभग पूरा ही कंट्रोल कर सकते हैं।
1: आपने एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा उठाया कि हमको शरीर के संकेतों को पहचानना और पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर बीमारियों में वो कौन से संकेत हैं जो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल से जोड़ के इग्नोर करते हैं, इस बारे में थोड़ा तफसील से
0: बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। देखिए नेचर ना आपको साइन सिम्टम सब देता है, नेचर किसी के साथ ऐसा बेईमानी नहीं करता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो अलग बात है। कोई भी अगर 6-7 दिन मान लीजिए आप थकान लग रही है तो 6-7 दिन, 7 का फिगर रखिए, 7 डेज का एक याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो इस तरह जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि भाई कमजोरी लग रही है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वजन कम लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शहर में तो ठीक है दिल्ली मुंबई में है तो आप हॉस्पिटल्स में अब तुरंत, लेकिन छोटे जगह पे भी है ना, तो आसपास आजकल स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके डॉक्टर को बताइए जरूर। ये तो नॉर्मल जो सिम्टम है भाई, नींद नहीं आ रही है यार, भूख नहीं लग रही है, हो सकता है नॉर्मल ही होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़ी बीमारी का संकेत भी रहता है। और कुछ चीजें जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी डॉक्टर को संपर्क करना है, वो भी मैं, जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सिर्फ चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं, आपके जॉज में पेन हो रहा है, आपके ईयर में पेन हो रहा है और आपको लग रहा है हेडेक हो रहा है और आपको लग रहा है थोड़ा सा ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और आजकल खासकर स्ट्रोक में थोड़ा भी कहीं भी आपको कमजोरी, देखिए एक जनरल कमजोरी होना एक अलग बात है, लेकिन आपको किसी अगर विटामिन की कमी है तो सिर्फ दाएं हाथ में कमजोरी नहीं होगी, सिर्फ आपका बाएं उंगली में ऐसा कोई सेंसेशन जा रहा है तो विटामिन की कमी है, सिर्फ वहां नहीं होगा, ये स्ट्रोक का अर्ली साइन हो सकता है,
1: यानी एबनॉर्मेलिटीज पर ध्यान देना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को ना, हर चीज हम सिर्फ शरीर को ही इग्नोर करते हैं, बाकी दीवार से कहीं पानी टपक रहा है तो अरे यार पानी क्यों गिर रहा है, गाड़ी में हवा कम है, हवा का कम है, मोबाइल का ये स्क्रीन क्यों, लेकिन जिस शरीर के सहारे हम सारी जिंदगी निकालते हैं ना, थोड़ा दिखाई ठीक है वो आंखों में लगता है चश्मा, वो इग्नोर करते हैं हम,
1: जो जरूरी बात है उनको
0: वो इग्नोर करते हैं। दांत में दर्द ठीक है यार, अरे कभी कभी वो दांत दर्द हार्ट या कार्डियक का भी तरफ आप लेके जा सकता है, बट हम लोग थोड़े इंडियन लोग हैं ना,

0: वो खाने पे डाल देते हैं, ये गलत नहीं है, होता है ऐसा नहीं, 70% वैसे ही रहता है, बट हाँ ये साइन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि यार ये पूछने में क्या जाता है। आजकल तो इतने सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप है, हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा है, तो आप जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, वो आपको गाइड तो कर देंगे।
1: डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी मुद्दे पर बातें हुई और सेहतनामा कार्यक्रम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है गाने, तो यहाँ एक गाने का ब्रेक लिया जाए और आपकी पसंद का पहला गाना सुनवाया जाए।
0: हाँ ये जरूरी है, ये डॉक्टर लोग के लिए भी जरूरी है और मरीजों के लिए भी जरूरी है।
1: जी
0: तो किशोरदा का एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है,
1: जी
0: ये जीवन है इस जीवन का बहुत।
1: देखिए मुझे तो ये पता है कि आप गुनगुनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं बच के जाइएगा,
0: थोड़ा सा गुनगुना देते हैं
1: जी।

0: डॉक्टर संदीप, बातें हो रही हैं इंटेंसिव केयर की। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आईसीयू स्पेशलिस्ट की दिनचर्या क्या होती है, आप किस तरह से क्या काम करते हैं?
1: इसमें थोड़ा हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर बने हैं
0: जी,
1: आप आर्मी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, तो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रात की नींद जरूरी है, लेकिन एक कॉल अगर किसी मरीज का आ रहा है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं।
0: तो किसी भी वक्त मुस्तैदी से जाना पड़ सकता है।
1: हाँ, कुछ प्रोफेशन है ऐसे, डॉक्टर हुआ, आर्मी वन हुए, पुलिस वाले हमारे हुए, ये इनका समय का क्या ही करेंगे सर।
0: जी जी बिल्कुल।
1: बाकी

0: लोग चैन से सोएं तो कोई तो जगेगा।
1: बिल्कुल
0: बट हाँ, फिर भी हम डॉक्टर हैं हम लोग, तो हमें पता होता है कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो नींद कहाँ कैसे पूरी कर सकते हैं। और जैसे हर आदमी को चाहिए अपने दिनचर्या में थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे उठना। और आजकल सबसे बड़ा ना फैक्टर हो गया है स्ट्रेस सर।
1: जी।
0: ये आप जब मेडिकल की किताबें पढ़ेंगे ना, तो हर बीमारी के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लिखा रहता है।
1: जी
0: दिल की बीमारी हो, वो दिमाग की बीमारी हो,
1: थायराइड हो,
0: थायराइड हो, इवन कैंसर, कोई भी स्ट्रेस में है उसको कोई भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, ये आप मान के रखिए। और हर को ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग करता है, कोई गार्डनिंग, कुछ ना कुछ एक शौक रखिए और अपने दिनचर्या में से 15 मिनट 20 मिनट निकालिए उस चीज के लिए। कम से कम डिस्कनेक्ट होइए ये स्ट्रेस से,
1: जी
0: वो बहुत जरूरी है सर। मेरे ख्याल से इंटेंसिव केयर यूनिट तक बात ही ना आए यार, बाहरी केयर कर लेते हैं।
1: जी मतलब जीवन में एक शांत मन और एक स्वस्थ तन के लिए बहुत जरूरी है कि
0: बहुत
1: हम
0: बहुत
1: टेंशन से दूर रहें,
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल।
1: दबावों से दूर रहें।
0: वो जो WHO की डेफिनेशन आती है ना हेल्थ की,
1: जी
0: उसमें शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है।
1: जी जी
0: आप स्ट्रेस में हैं तो आप कुछ भी एंजॉय थोड़ी ना कर पाइएगा।
1: बिल्कुल
0: आपका हेडेक हो रहा है तो आप कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, कितने भी अच्छे गाने, आप एंजॉय तो नहीं कर सकते ना। किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए आपका स्वस्थ होना, किसी भी चीज को एंजॉय, पैसा भी है तो किस काम का, जो आप हमको ही देने के लिए रखे हैं, मतलब नहीं है ना। आप
1: बिल्कुल
0: अपना एज अ डॉक्टर तो सबको ये एडवाइस है कि अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने दिनचर्या पे बहुत ध्यान रखें। और बहुत मुश्किल काम नहीं है सर,
1: जी जी
0: बहुत सिंपल ही, ऐसा कुछ आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। समय पे सोना है, समय पे खाना है, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करना। दूर तो नहीं रह सकते, कोशिश कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है सबके लिए, बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दों पर हो रही हैं, और डॉक्टर संदीप, मैं ये चूंकि बारिश और बारिश के बाद के मौसम के ये दिन जहां पूरे देश में अलग अलग तरह के बुखार फैले हुए हैं जो
0: बिल्कुल
1: धीरे धीरे कई परिस्थितियों में गंभीर रूप ले
0: हाँ
1: लेते हैं और
0: बिल्कुल
1: आईसीयू तक मामला चला जाता
0: बराबर
1: है,
0: बराबर
1: इस मामले को जरा हमें समझाएं और इससे जुड़ी हुई सावधानियां बताएं।
0: हाँ, ये बहुत अच्छा, इस समय को देखते हुए बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मलेरिया, डेंगू, जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ तो बारिश का एक मौसम का एक अलग मज़ा है, लेकिन मज़ा तभी तक है जब आप स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: तो उसमें भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किसी भी चीज को, किसी भी साइन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, और खासकर इसमें बुखार, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, थकावट, बारिश के सीजन में इन सब को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ काउंटर से दवा लेके नहीं खानी है सर। बुखार अगर 24-48 घंटे है तो एक बार जरूर संपर्क करें डॉक्टर से। इसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें।
1: जिस पर आजकल ध्यान नहीं होता क्योंकि लोग पंखे की हवा में होते
0: नहीं नहीं
1: हैं,
0: सर,
1: एसी में होते हैं, पानी जो है वो मोस्ट इग्नोर्ड चीज है।
0: डेंगू का ही मरीज है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको आराम कराते हैं, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, और सिम्टम जो है उसकी बुखार वगैरह की दवा दे देते हैं।
1: जी
0: आप देखिए ज्यादातर बीमारी को कुदरत ही ठीक करता, आप सहारा दीजिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि हम सपोर्ट कर दें, बॉडी को सपोर्ट कर दें, और नेचर अपने आप आपको क्योर करता है।
1: जी
0: जब हम
1: एक समस्या जो बहुत बड़ी है कि बुखार आया या जुकाम हुआ तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग ले लेते हैं, घर पर पड़ी हुई है
0: हाँ
1: तो
0: हाँ बराबर है।
1: पैरासीटामोल उठा के ले लिया,
0: सही बात
1: है
0: है।
1: ना? तो ये जो चीजें हैं इनसे सावधान कैसे करें लोगों को? इतने सालों से ये बात चली आ रही है पर ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल रुकता नहीं है।
0: ये बहुत बड़ी समस्या है सर, खासकर एंटीबायोटिक्स जो हम लोग मिसयूज गए और उठा के लिया है। यहाँ तो बड़े शहरों में तो ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, बाकी जगह तो आप जाइए और लेके आ जाइए। एक बुखार आया तो एक टैबलेट मान लिया, ठीक है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, दूर है, एक क्रोसिन ले लिया। लेकिन अगर बुखार 24 घंटे से ज्यादा का है तो एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट तो करना ही चाहिए आज के सिनेरियो में। कोई भी एक्सपर्ट इसीलिए बनाए भी जाते हैं, डॉक्टर्स इसीलिए हैं। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं सर, अभी तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत अभी तो हर जगह स्वास्थ्य केंद्र है, थोड़ा भी है तो आपको एक सही दिशा तो मिल ही जाती है। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, उसका बहुत नुकसान होता है, और उसके ही परिणाम ही आजकल आप देख रहे हैं किडनी की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, लीवर की बीमारियां, ये सब ये जो दुरुपयोग है ना, किसी भी चीज का आप मिसयूज करेंगे।

0: तो ये उसका ही परिणाम है कि आजकल बहुत इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल रही हैं।
1: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बीते दिनों एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि अगर एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया जाता तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जो व्यक्ति को आगे के लिए दिक्कत दे सकता है।
0: मैं आपको बताऊं कि जब हम मेडिकल में पढ़ते थे 2006 तक की बात बताऊं तो उस वक्त था कि 10 20 25 रुपए के एंटीबायोटिक में आदमी ठीक हो जाया करता था। आज की तारीख में सर जो रेजिस्टेंस जो हो रहा है, लोग बोलते हॉस्पिटल का बिल आ रहा है, अरे एक दिन का एंटीबायोटिक की दवा की कीमत ही हो जाती है 10,000। हायर एंटीबायोटिक्स इतने, क्योंकि ये वही है, हमने यूज कर करके हमने मिस यूज करके उसका इतना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है
1: कि दवाएं असर ही नहीं कर
0: रही है। आपको हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ रहा है, वो महंगी है और प्लस जान के लिए कितना खतरा है एंटीबायोटिक। हमको भी लिखने से पहले दो बार सोचना पड़ता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, जान बचाने के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है अगर हम अभी नहीं सुधरे। ये अभी भी वक्त है सुधर जाएं, नहीं तो सिर्फ 1929 में पेनिसिलिन, उसी वक्त पेनिसिलिन आई थी जिसने सारी सृष्टि को बचा लिया था। वो स्थिति फिर आने वाली है ऐसा लगता है, जिस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहे हैं वही स्थिति, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं होते तो अभी तक सृष्टि खत्म हो चुकी होती। तो वो स्थिति हम फिर इंसान लोग पैदा ना करें।
1: ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, एक आम आदमी को एक आम भाषा में जरा समझाइए।
0: देखिए रेजिस्टेंस का आपको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और वही एंटीबायोटिक चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन नहीं है, किसी और का इन्फेक्शन है, दवा कुछ और ले रहे हैं, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेता है कि सिर्फ नॉर्मल एंटीबायोटिक फिर उस पर काम ही नहीं करती है, उसको आप वक्त दे देते हैं। ये नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए कि आपने जैसे अधमरा सांप ना छोड़ते नहीं है, बाद में आपको वो डसने वाला है, वो बैक्टीरिया का वही हाल है। आपने उसको हाफ ट्रीटमेंट पार्शियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, वो फिर बाद में जब रिबाउंड करता है ना, तो वो एक नॉर्मल, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि बाबा खुद से एंटीबायोटिक थेरेपी तो बिल्कुल मत कीजिए आप
1: जी,
0: स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के निरीक्षण में ही कीजिए उसको।
1: तो इस बीच में जो बातें हुई उसका सार ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर केमिस्ट पर जाकर एक तो ओवर द काउंटर दवाएं अपनी तरफ से इलाज ना करें, और दूसरा ये है कि बिना बात के एंटीबायोटिक आधी अधूरे कोर्स कर लेने से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो हम सब इंसानों के लिए बहुत खतरनाक बनता है,
0: बहुत बड़ा इंसानियत के लिए वॉर से ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया होने वाले हैं जिस तरह से ये हमारे सामने आ रहे हैं चीजें
1: जी।
0: इंटेंसिव केयर यूनिट पे हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो सब पैन रेजिस्टेंस के, कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, एक काम कर रही है सिर्फ। सपोज आने वाले समय वो भी नहीं काम किया
1: तो कुछ भी काम नहीं
0: तो
1: कर
0: क्या करेंगे हम। ये एक बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है अगर हम सही समय पे हम नहीं सुधरे तो।
1: जी डॉक्टर साहब, अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ हाँ बहुत।
1: तो आपकी पसंद का अगला गाना कौन सा होगा?
0: एक कर्ज फिल्म का ओम शांति ओम।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा से बातचीत हो रही है। ये जो आईसीयू के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग मुद्दों पर बातें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वापस एक खतरनाक जो जगह आईसीयू, उसकी तरफ चलते हैं। जब कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज आता है, मान लीजिए उसको स्ट्रोक है, अटैक है या कोई और बीमारी है, तो एक आईसीयू में तैनात डॉक्टर क्या प्रोसेस करता है, वो क्या प्रोटोकॉल होता है उसका?
1: सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारा होता है कि उसको स्टेबलाइज करना।
0: जी,
1: एक नॉर्मल कि भाई पल्स, बीपी, ऑक्सीजन, पेशाब ठीक से बन रहा है, इतनी चीजें बेसिक हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहता है कि इसको स्टेबलाइज करें। इसको
0: आप लोग बहुत टेंशन के दौरान काम करते हैं, क्योंकि आईसीयू का मतलब है कि बहुत पैनिक में।
1: वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि पैनिक नहीं होना है,
0: मरीज और उसके साथी भले पैनिक हो,
1: क्योंकि उस स्थिति में फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है।
0: जी, तो
1: स्ट्रेसफुल कंडीशन होती, पैनिक से हम लोग नहीं मतलब बचते हैं कि भाई, क्योंकि अभी हमको हमारे पास टारगेट सामने है कि भाई इसकी जान बचानी है। जितना हमने सीखा है, जितना हमने पढ़ा है, उसका सही उपयोग करके इस आदमी को इस कंडीशन से बाहर निकालना है। फिर हमारी एक विशेषज्ञ की टीम होती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी का है तो किडनी के स्पेशलिस्ट को, ब्रेन का है तो ब्रेन के स्पेशलिस्ट को, और फिर हम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि स्टेबलाइज

0: करते हुए इसकी वजह निकालनी, क्यों इस कंडीशन में पहुंचा। ट्रीट द कॉज हर का रहता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो कहाँ से आ रहा है, यूरिन से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, वो पता लगाना, फिर अकॉर्डिंग टू दैट उसको ट्रीट करना। यही बेसिकली इंटेंसिव केयर ही होता है कि आप पहले तो उसको स्टेबलाइज किया, उसके ऑक्सीजन को, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके हार्ट रेट को, फिर पता लगाया एंजियोग्राफी करके भाई किस जगह से क्लॉट है, उसको वहां से दूर किया। उसमें भी स्टेजिंग होती है, वो तो बात की चीजें हैं, बट रिवार्डिंग भी बहुत है सर। जब आपका मरीज अच्छा होता है तो उससे अच्छा आपको कुछ, फिर वो पैसा दे ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जब हंस के उसके परिवार वाले बोलते हैं ना सर आपने बचा लिया
1: जी,
0: तो उससे बड़ा रिवार्ड हम डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं होता है।
1: और
0: बहुत अच्छा लगता है ऐसा, हमेशा स्ट्रेसफुल नहीं, जब वो रिजल्ट मिलता है ना उसका तो वो बहुत अच्छा भी लगता है।
1: बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। आपने अलग अलग शहरों के छोटे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है और एक बड़ा अनुभव आपके साथ है, तो अपने करियर की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त आपको याद आ रही हो।
0: 26/11 हुआ था, बहुत दुखद हादसा था और हम लोग उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे।
1: ओहो, बिल्कुल आप उसी इलाके में थे।
0: उसी में थे, तो इंटेंसिव केयर में हमारे कई कमांडोज भी आए थे। तो एक कमांडो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, उनके सीने में बहुत सी गोलियां लग गई थी। तो हमने उनसे जब छुट्टी हो रही थी तो हमने पूछा सर कैसा रहा, कहा सर उतना दर्द तो गोली से नहीं हो रहा जितना दर्द आप जब गोली निकाल रहे थे तब हो रहा था। हमने कहा सर आप गोली से नहीं, कहे सर उसके लिए हम यूज टू हैं, जैसा आपने पूछा पैनिक की, वो जब सामने से तो हमारा डर खत्म हो जाता है, वो लगता है इसको टारगेट है, ये हमारे देश का दुश्मन है, इसको खत्म करना है, तो उस वक्त हमको दर्द नहीं महसूस होता, यहाँ पे फिर हम नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी, वो मुझे लगा कि यार हमने पूछा कि सर आप गोलियों से नहीं डरे, आप ये जरा टांकों से डर रहे हैं, क्या डर नहीं रहे। लेकिन आपको बड़ा मजेदार एक वाक्य सुनाता हूँ
1: जी।
0: मैं इंटेंसिव केयर में नाइट ड्यूटी में था और रवि साहब एडमिट थे,
1: संगीतकार रवि की,
0: हाँ हाँ, जो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर
1: जी जी।
0: तो रात का वक्त था और मैं उस वक्त अपने ट्रेनिंग में था, तो 1-2 बजे का वक्त था, तो मैं नोट्स डाल रहा था और जैसे इंडियन लोग थोड़ा हमिंग करते हैं ना, ला ला ला ला ला ला ला, ऐसा करके मैं डाला, तो रवि साहब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये गाना आपको बहुत पसंद है। कहा हाँ बहुत अच्छा, क्या कंपोजिशन सर, पहले के कंपोजर क्या कंपोज करते थे, आपको पता है किसने कंपोज किया है। हमने कहा हाँ एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे रवि साहब, हैं मतलब रवि साहब, आपने मेरा नाम पढ़ा क्या, बोर्ड पे नाम लिखा होता। हमने देखा, देखा हाँ आपका भी सेम नाम है। मैं सेम नहीं, मैं ही रवि साहब हूँ।
1: अरे क्या बात
0: तो बड़ा अच्छा लगा उनसे और बहुत सी बातें बताई उन्होंने, बड़े बड़े जो हम तो सिर्फ जो सपनों में सोचते थे, जब रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, हमने पूछा ठीक हो गए तो कभी फंक्शन वगैरह में आते थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, तो बड़े जिंदा दिल इंसान थे,
1: कमाल के इंसान। मेरा भी उनसे एक नाता रहा है और
0: अच्छा अच्छा
1: वो बहुत दिलचस्प किस्से सुना,
0: हाँ हाँ,
1: उनके पास एक से बढ़ के एक किस्से थे और खुद गाने भी गाया करते थे।
0: अरे अरे बहुत कमाल के कलाकार।
1: अभी जब गाने की बारी आएगी तो रवि जी का गाना सुना जाएगा। अभी अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए, आपने बताया कि एक कमांडो आए थे, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति, एक्सीडेंट विक्टिम्स हों या बर्न विक्टिम्स हों, इस तरह के लोग आते हैं जो बहुत विभत्स स्थिति में भी होते हैं,
0: अपने
1: उनको कैसे संभालते हैं।
0: मैं सफदरजंग के बंस यूनिट में था जब सरोजनी नगर बम कांड हुआ था।
1: ओ ओ ओ,
0: वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हादसा था वो
1: जी।
0: और उस वक्त हमको याद है कि हम ड्यूटी खत्म करके हमारे 3 या 4 बजे के करीब हम निकल गए थे एक दिल्ली में, हम ड्यूटी खत्म करके अपना कनॉट प्लेस में थोड़ा घूमने घामने गए थे, फिर अचानक फोन बजने लगा हमारे सर का फोन, तुम लोग कहाँ हो। तो उस वक्त हमको ये पता नहीं था कि ये बम विस्फोट हो चुका है। अंदर से कहा हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी सर कॉल कर रहे हैं। मैं क्या हो गया सर, बोले जहां भी हो जितने भी दोस्त हो सब भाग के सफदरजंग आ जाओ, जो जहां भी है जो सबको फोन करो कि बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है इस वक्त। फिर समझ में आया कि भाई बहुत बड़ा बम कांड हुआ है। और मेरे ख्याल से मुझे भी याद नहीं है बट 200-300 लोग की डेथ हुई थी। और उस वक्त जब बॉडी सर आ रही थी ना, तो मतलब हमारा एक दोस्त था वो देख नहीं पाया, डॉक्टर होके वो वहां पे फेंट कर गया।
1: ओहो,
0: और किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, मतलब वो इतना विभत्स, वो मेरे मतलब आज भी जब मुझे याद करता हूं तो मेरे इसे रोंगटे खड़े आती है। और वो क्या सीन था, मतलब कैसे कैसे करके, और बट ये हमारे बड़ी अच्छी चीज है हिंदुस्तान में कि सब लोग आसपास के सभी लोग, सभी हॉस्पिटल के बगल में एम्स था और मौलाना आजाद, जो भी डॉक्टर जब भी सुना जिधर से आया वो गाड़ी मोड़ के आ गया। और उस वक्त वो सीन अभी भी नहीं उतरता, कभी भी हम याद करते हैं ना कि वो जो हादसा जो हुआ था वो बम विस्फोट, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं

0: ऐसे मुश्किल हालात में भी डॉक्टर जो है अपना संतुलन बना के और लोगों को बचाने का काम करते रहते हैं,
1: ड्यूटी है सर। लेकिन हाँ अच्छा लगता है, मैंने बताया जब हमारा मरीज अच्छा होके जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है तो बहुत रिवार्डिंग है सर, उससे बड़ा इनाम और क्या मिलेगा।
0: बिल्कुल, आपने ये वादा किया था कि रवि जी से जुड़ी घटना सुनाने के बाद कि अब उनका कोई गाना सुना जाएगा, तो कौन सा गाना सुना जाए?
1: मेरे जोहरा जो भी सुनते हैं।

0: डॉक्टर संदीप वर्मा, अब मुंबई में आप अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं और आईसीयू यूनिट में लगातार काम कर रहे हैं। ये जो नया दौर है, इसने आईसीयू यूनिट को किस तरह से बदला है और आपके काम करने की प्रणाली को किस तरह से बदला है?
1: टेक्नोलॉजी का तो सर बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है, बहुत बहुत फायदा हुआ है। अब काफी एडवांस हो गए हैं हम लोग, मतलब हर फील्ड में, रेडियोलॉजी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, वेंटिलेटर्स की क्वालिटी हो, और मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है हर फील्ड में। इवन हम स्ट्रोक का हम वाकया आपको बताएं कि एक हम जब बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, एक बैंक के कर्मचारी थे और वो कुछ साइन कर रहे थे और अचानक वो हाथ से पेन गिर गया उनके, तो उनको लगा कि शायद कुछ हुआ होगा। हर आदमी एक पहली बार में कैसे सोच लेगा कि वो स्ट्रोक है, लेकिन वो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे ही था वो कार्यालय उनका, तुरंत वो लेके आया। और उनका वो पूरा राइट साइड पूरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बताया कि जो वक्त की कीमत,
0: बिल्कुल,
1: तो सही समय पे वो आ गए सर और बिल्कुल 100% रिकवर हो गए। अगर वो सही समय पे नहीं आते सर तो वो हाथ उनका हमेशा के लिए चला जाता
0: जी।
1: तो ये है वक्त, फिल्म की बात की आपने, ये है वक्त पे सही समय पे सही जगह पहुंचने का ना, ये है।
0: ये जो क्रिटिकल टाइम है किसी भी गंभीर बीमारी के मरीज को बचाने के लिए, जो एक शुरू के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का ये जो वक्त होता है, पूरे देश में आम जनता ये कार्यक्रम

0: सुन रही है, एक इंटेंसिव केयर यूनिट से जुड़े हुए डॉक्टर के तौर पर आप हमें ये समझाएं कि किस तरह से बिना पैनिक हुए फौरन भागना चाहिए और किस तरह से मरीज की मदद करनी चाहिए।
1: देखिए, आज के सिनेरियो में एक ब्रेन का और एक हार्ट का दो चीज में आपको बहुत, क्योंकि इसमें अगर वक्त आपने जाहिर कर दिया तो काफी देर हो जाता है। ब्रेन का तो मैंने जैसे जिक्र किया कि कोई भी कहीं भी आपको कमजोरी लग रही हो, बात करने में जुबान लड़खड़ा रही हो आपकी, स्लरिंग जिसको बोलते हैं, विजन में दिखने में कोई दिक्कत हो रही है, ये सब लक्षण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें सर।
0: मरीज तो ठीक है, लेकिन जो मरीज के साथ में
1: साथ वाले वो उनको
0: पास पड़ोस के लोग हैं।
1: हाँ हाँ, और ये जो हमारे यहाँ गुडविल में ही रहता है, जो अपनी पहले थेरेपी, फिर दादा दादी नानी की थेरेपी, फिर बगल वाले दुकानदार की थेरेपी, फिर फोन पे कहीं और से थेरेपी, इसमें जब हम 3.5-4 घंटे निकाल देते हैं जो क्रिटिकल टाइम होता है बचाने का, तो वो बिल्कुल ना करें सर।
0: तुरंत पहले तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए दौड़ें,
1: जिस चीज के एक्सपर्ट के पास जाएं, इसके लिए बनाया गया। और अब मैं तो जैसे पहले भी बोला आपके इस इंटरव्यू में कि अब गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी कर दी है, आप कहीं भी तुरंत संपर्क में आ सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कहीं आप डॉक्टर को फोन करें
0: बजाय इसके कि नुस्खे अपनाने
1: हाँ,
0: की
1: नुस्खे, वो ठीक है, वो थोड़ा सा छिल गया, थोड़ा सा कट गया, थोड़ा सा पेट खराब हो गया, उसके लिए ठीक है, लेकिन जो इस तरह के वाइटल साइन है, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना हो रहा है,
0: झाग वाग निकल रहा है,
1: हाँ वो तो मिर्गी या सीजर या जो भी लोग समझ, वो उसमें टाइम नहीं खराब करना है सर। और कभी आप डिजीज वाइज इमरजेंसी में कभी आप रखिएगा कि भाई ब्रेन के लिए अलग, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा कि भाई इस वक्त ये मोटा मोटा समझाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि भाई
0: मान लीजिए कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, तो अमूमन तो पता नहीं चलता ना कि ये हार्ट अटैक है, तो ये जो आजू बाजू के लोग हैं, जो उसके पास मौजूद लोग हैं, मान लीजिए कोई सड़क पर ही जा रहा है और ऐसी कोई परिस्थिति होती, तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक हो सकता है और फौरन ले जाए।
1: देखिए, जो सबको पता ही चेस्ट पेन, लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन ही नहीं, जॉ पेन, ईयर पेन, पसीना आना, और खासकर डायबिटिक पेशेंट इस बात का ध्यान रखें, जो क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना सर, उनको वो पेन वो टिपिकल महसूस नहीं होता है।
0: ओह,
1: जो भी डायबिटीज से सफर कर रहा है ना, तो बीच बीच में अपनी जांच करते रहे, अगर उसको पसीना आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, लेकिन उसको टिपिकल हो सकता है डायबिटीज पेशेंट को वो टिपिकल चेस्ट पेन ना हो जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होता है, तो वो थोड़ा एक ट्रिकी पॉइंट है जो भी डायबिटीज सफर कर रहे हैं लोग उनके लिए। लेकिन कोई भी ऐसी जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन, जॉ पेन, पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब चीजों को कभी भी, टिंगलिंग हाथ से बाएं हाथ में, बट आप राइट साइड पेन को भी इग्नोर ना करें। हमको पता नहीं कि लेफ्ट का ही पेन हार्ट का है, वो कभी कभी बैक पेन भी हार्ट का होता है। और यूजुअली अगर आप टिपिकल देखेंगे तो पेशेंट पेन जो है एक जगह लोकलाइज नहीं होता, वो रेडिएट कर रहा होता है। ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं रह गया अभी, अभी बीमारियां काफी अपना स्वरूप बदल के भी आ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि पेन अगर रेडिएट हो रहा है जॉ की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये अलार्मिंग साइन है, हार्ट से जुड़ी ये अलार्मिंग साइन। उसमें और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं
0: जी,
1: उसको कभी लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज अलार्मिंग है, आपको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र एक चिकित्सक, जो भी डॉक्टर है जो इससे जुड़ा हुआ है, उससे संपर्क करना चाहिए।
0: स्ट्रोक से जुड़ी हुई क्या सिग्नल्स होते हैं?
1: जैसे कोई भी वीकनेस, कोई भी हाथ पर कहीं भी वीकनेस महसूस हो रही है, कमजोरी हो रही है, आप किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अगर चेहरे की सिमेट्री आपको जो है चेंज लग रही है, फेशियल डिविएशन, कोई एंगल माउथ
0: टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा है,
1: आप जो आपने पहले जिस आदमी को देखा है और आपने नोटिस किया कि यार उसका चेहरे में कुछ तो
0: विरूपता
1: आ रही है, सिमेट्री कहीं भी जाती है ना सर,
0: तुरंत समझ जाना चाहिए।
1: हाँ, कहीं भी सिमेट्री, जो नेचर के जो बनी हुई सिमेट्री है, वो अगर डिस्टॉर्ट हो रही है, डिविएट हो रहा है, आंख ऊपर की तरफ जा रही है, आंख को दिखने में दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रहा है, दो चीज दिख रही है, ये सब जो भी साइन है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है सर, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना है
0: डॉक्टर। इन दोनों परिस्थितियों में कितना वक्त होता है मरीज के पास, कितनी जल्दी पहुंचाना चाहिए?
1: देखिए, जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप टाइम खराब करते हैं, फिर फोन किया, उससे बात किया, उसने बताया फलाने को हुआ था, तो ऐसे नहीं, नहीं बाबा, आसपास पहले वहां पहुंच जाए, आप एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वो आपको गाइड करेगा ना, वो किसी भी रास्ता भूल जाते हैं, अगर पुलिस वाला कोई खड़ा है सिग्नल, वो सबसे अच्छा बताता है ना हमको। आप अनजान शहर में है और एक पुलिस वाला, आप रास्ता भटक गए, उससे पूछे, आम आदमी डॉक्टर तो नहीं होता है, आप साइन सिम्टम आपको जैसे ही लगे कि बाबा ये कुछ तो मेरे साथ एबनॉर्मल है, ऐसा पहले नहीं होता, उस पर मत डालिए कि

0: मैं यार आज खाना भूल गया, आज नींद नहीं हुई उस पे ठीक है, भगवान करे वही हो। मैं भी चाहता हूँ, डॉक्टर भी चाहते, भगवान ही नॉर्मल ही हो, लेकिन 99 में एक भी अब नॉर्मल है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना सर।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई हैं और यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल,
1: कौन सा गाना होगा?
0: यहाँ पे हम रफी साहब का एक गाना सुनेंगे,
1: ठीक है,
0: आज मौसम बड़ा बेईमान।
1: क्या बात है, आप गुनगुनाते हैं तो इस बार फिर मैं चाहूंगा कि आप गुनगुनाएं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें मेडिकल से जुड़ी हुई हुई। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता है और वो ये है कि हनुमान अंश फिल्म के जो निर्देशक हैं वो आपके साथ मेडिकल कॉलेज में थे।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी हमारा दोस्त भी है, हमारा जूनियर भी है, और उसके लिए बहुत खुशी है। उस बच्चे ने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत शानदार उसने ये फिल्म बनाई है। और लोग बोलते हैं कि सफलता सफलता उसने आज हम उसकी सफलता देख रहे हैं। उसने जो 20 साल मेहनत की है उसका ईश्वर ने उसको रिवॉर्ड दिया है। और बातें मुलाकात होती है, बट आपके माध्यम से भी हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। बहुत बेहतरीन काम किया है उसने।
0: क्या बात है।
1: और इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मुंबई लाने वाला विशाल ही था।
0: अच्छा अच्छा
1: मैं दिल्ली में था और मजा नहीं आ रहा था काम करने में, तो कहा चलो बस मुंबई चलते हैं। मैं भी गा फिर देता हूँ वो मजाक मजाक, चलो आपको कुमार सानू बना दूंगा यार, आप चलो तो मैं तो कंपोजर हूँ ही।
0: अच्छा, अब वो तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे।
1: हाँ जी, हाँ जी, जी। और वो गाने लिखता भी था, कॉलेज में भी बहुत अच्छा, हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल बैंड टाइप का था।
0: अच्छा,
1: तो पहले वो हर जैसे यंग बच्चे के होते ना, रॉक स्टार बनना है बस, गिटार वगैरह बजाना, गाने लिखना। और वहां से वो क्रिएटिविटी तो थी, लिखता भी था, गाने भी बनाता था, स्केचिंग भी बनाता था। और हम सभी बहुत खुश हैं उसके लिए कि आज उसको वो मुकाम मिला है जिसको वो जो डिजर्व करता है।
0: क्या बात है। तो मतलब एक डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए दूसरे डॉक्टर साहब का जिक्र निकल आया
1: क्या?
0: क्या बात है। अच्छा, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद इस पर बात करनी चाहिए, और वो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं, जाहिर है कि परिवार जो है वो बहुत पैनिक होता है, बहुत चिंता में होता है, पर आईसीयू एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद करता है। वहां का एक खास अनुशासन और संयम होना चाहिए जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि वो जो जोन होता है उसको सबसे हमारा रहना है कि उसको इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं। अक्सर मैं आपका पॉइंट समझा कि रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया गया, बात सही है कि कोई स्ट्रेस में है अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी, बट वो फॉर द टाइम बीइंग ना हमको उसको शांत रखना है, उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, और सबसे भी ज़्यादा हमको इन्फेक्शन फ्री रखना है।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी,
1: सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम बोल भी देते हैं लोगों, यार सेफ्टी फर्स्ट। अगर छोटा बच्चा आग छूना चाहे तो माँ उसको छूने नहीं देती है ना। वो बच्चा रोएगा, बट ठीक है, हमको पता है छू देगा तो उसका नुकसान है। वैसे ही कुछ हमारा रहता है कि भाई हम मानते हैं आपको बुरा लग रहा है कि आपको मिलने नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप उस कंडीशन, हमारी प्रायोरिटी है वो मरीज की सेफ्टी है,
0: उसकी जान बचाना है।
1: उनकी जान बचाना है। आपको देखिए वो इमोशनल होगा या आप उसको देखिए इमोशनल होंगे, आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। और जो कुछ है हम आपको बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं, बीच बीच में बताते रहते हैं क्या है क्या नहीं। बट हाँ, आपकी बात सही है कि हर आदमी देखना चाहता है कि भाई किस अवस्था में मेरा मरीज है, वो उसके भले के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे को आग नहीं छूने देती ना,
0: लोगों को इस बात को समझना चाहिए। हाँ, कि डॉक्टर्स हाँ, अपनी जिम्मेदारी
1: निभा रहे हैं और उसके
0: आईसीयू में खास तरह का बर्ताव किया जाए,
1: किया
0: और
1: जाए।
0: जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसा मान के बाहर रुका जाए।
1: हाँ, और
0: इंतजार किया जाए।
1: डॉक्टर कम्युनिटी से मैं ये भी कहूंगा भाई थोड़ा पोलाइट रहते हैं, पोलाइट। कभी कभी देखिए हम इंसान ही हैं।
0: जी जी,
1: कभी कभी हो सकता है कि हमने जो है बहुत, जो उम्मीद थी उनसे जितने प्यार से बात करना चाहिए शायद मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात किया, तो वो कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि जितने प्यार से वो उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर बोलेंगे, शायद उतने प्यार से नहीं बोला मैंने, लेकिन इंटेंशन कभी हमारा वो नहीं होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप वर्मा, बहुत दिलचस्प बातें हुई और आपने कुछ बहुत जरूरी मुद्दे हमारे श्रोताओं को समझाए आज की इस बातचीत में। विविध भारती के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको मौका देने के लिए, और एक डॉक्टर की तरफ से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संदीप वर्मा से यूनुस खान की ये बातचीत। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
6: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
4: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जब

है गीत में पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक ऐसी श्रृंखला जिनमें वो गाने शामिल हैं जिन्हें पुरुष और महिला दोनों स्वरों ने अलग अलग गाया है, पर सुनने के आनंद और कौतूहल के लिए इन गानों को हमने एक दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। यादों की तहरीर जैसे सितारों पे लिखी होती है, सितारों के कैनवस पर बनता है कोई

चेहरा और बस मन खिंचा चला जाता है गुजरे जमाने में। यादें जुगनू की तरह चमकती हैं, कोई खुशबू, कोई इमारत, कोई तस्वीर, कोई बात, कोई गाना हमें खींच कर ले जाता है उस वक्त की तरफ जो बीत चुका है, जो अब कभी वापस नहीं आएगा, जो यादों में तब्दील हो चुका है।

सदियों से आसमान पर कंदील बनकर चमकता रहा है चांद। ये चांद अकेले लोगों का साथी है। ये चांद कभी उदास लगता है तो कभी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। चांद ने देखा है लोगों को खुश होते हुए, उदास होते हुए। बातें करता है हमसे ये चांद। न जाने कितनी पीढ़ियों की, न जाने कितनी बातें चांद को पता हैं, पर अब लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि किसी के पास चांद से बातें करने की फुर्सत ही नहीं।

जिंदगी ने कितना कुछ सिखाया है हमें। कभी ये फूलों से लगी, कभी पथरीली राहों पे ले गई जिंदगी। सब कुछ बदलता रहा, कुछ खोया कुछ पाया, पर जिंदगी रुकी नहीं, बस चलती चली गई। लोग बिछड़े।

लोग मिले, कारवां आगे बढ़ता गया। जिंदगी के माथे पर शिकन आती तो है, पर इसकी मुस्कान कभी जाती नहीं है, इसकी मुस्कान कभी जानी भी नहीं चाहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समान

0: नैतिकता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Chief Justice of India, Justice Suryakant, has said that the doors of the Supreme Court are open to everyone and any petition from any common citizen or member of an elected body is welcome. He said that every Indian citizen has the right to approach the court and the court will hear their concerns and grant relief for whatever is due under the law. Justice Suryakant made the remarks while addressing the 33rd Foundation Day of NHRC in New Delhi. Responding to the India Bloc's demand for a meeting, Justice Suryakant said he had received a letter yesterday requesting an appointment and had replied last night explaining why he was unable to meet them.
3: The doors of the Supreme Court are open to everyone. Any person, whether an ordinary citizen or a member of an elected body, has the right to approach us. Every citizen of India has this right. We will hear the grievances and address their concerns in accordance with the law and the legal framework. I received the letter yesterday and replied to it last night, and I have cited the reasons for expressing my inability to meet. I have maintained the confidentiality of the letter.
2: The BJP has accused the Congress leader and the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, of weakening the constitutional institutions and tarnishing the image of the country. Briefing media in New Delhi today, senior BJP leader and party MP Anurag Singh Thakur alleged that whenever the Congress party suffers electoral defeat, it sometimes raises questions on electronic voting machines and sometimes on the election commission. Mr. Thakur said that Congress should produce evidence instead of making accusations only. He said Rahul Gandhi also could not submit any evidence when he met President Draupadi Murmu along with the opposition delegation regarding alleged irregularities in special intensive revision. Delhi police has designated 3 new venues for protests and demonstrations, that is Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground in East Delhi. In an order, Delhi Police Commissioner Anurag Kumar announced that Jantar Mantar has been denotified as a designated protest site. The Union Home Ministry had constituted a committee to identify suitable alternative venues to ensure citizens' right to organise protests and demonstrations. Delhi Metro has informed that entry and exit gates of all metro stations of the Delhi Metro network are now open. The interchange facility at all the concerned metro stations is also available. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas and strong sense of purpose to policy making. Mr. Goyal was addressing the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi today. He highlighted India's resilience and growth trajectory despite global challenges. He further expressed confidence that India's economy

0: Miremos.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सकलैन अख्तर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने व्यापार बाधाओं को दूर करने और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व पर बल दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे ना मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के और संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की

0: सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सब के लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि FDI नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
5: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक FDI आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
4: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष

0: ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
1: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है। और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
0: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Sairam Muchtaba with the news at 9.